0: Also on demand at
1: www.5ebi.com.au under Indian Hindi.
0: Join us on Friday with Richa.
2: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है 5EBI 103.1 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट रिचा और आप सुन रहे हैं फ्राइडे विद रिचा। दोस्तों, एडिलेड की जो ये ठंडी हवा है ना, खिड़की के बाहर हल्की सी धूप और गरम चाय की एक प्याली, ऐसे मौसम में ना जाने क्यों दिल बार बार बीते हुए लम्हों की तरफ चला जाता है। वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन कुछ यादें उसके साथ चलती रहती हैं। बस एक खुशबू, एक गीत या एक लफ्ज और पूरा गुजरा हुआ जमाना आंखों के सामने आ जाता है। और आज का वो जो लफ्ज है वो है खत। अरे, खत का नाम सुनते ही कितनी यादें ताजा हो जाती है ना। एक वक्त था जब ना तो व्हाट्सएप था, ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना स्नैपचैट, और हर बात एक क्लिक में नहीं पहुंच जाती थी। दिल की बातें कागज पर उतारी जाती थी और हर चिट्ठी का इंतजार एक छोटी सी दिवाली या एक छोटी सी ईद जैसा होता था। छोटी तो नहीं कहूंगी, बड़ी ईद जैसा या बड़ी दिवाली जैसा होता था। कभी मम्मी की लिखावट, कभी पापा की नसीहत, कभी दोस्तों की शरारत और कभी किसी अपने के दो प्यार भरे लफ्ज। उन कागज में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, एहसास होते थे। खत सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे दोस्तों, महसूस किए जाते थे। हम जो अपने देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शायद उन रिश्तों की गर्माहट को और गहराई से समझते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम जरूर कर दी हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि उस इंतजार की मिठास कहीं खो सी गई है। क्यों, सही मानते हैं ना मुझे? खैर, आप सोच रहे होंगे रिचा फिर यादों की गलियों में निकल पड़ी। दरअसल आज मेरे पास आप सबको आपके द्वारा भेजे हुए कुछ ईमेल्स और मैसेजेस मिले हैं। उसमें कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं, कुछ मुस्कुराहट है और कुछ दिल को छू लेने वाले एहसास। पिछले हफ्ते मेलबर्न में भारत के प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए हमारे बहुत से साथी गए थे। उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे थे उसमें एक ही बात बार बार महसूस हुई, अपनों के साथ मिलने की खुशी, अपनी पहचान से जुड़े रहने का एहसास और देश से दूर रहकर भी दिल का हिंदुस्तान से जुड़े रहना। उन्हीं बातों को, उन्हीं यादों को और उन्हीं एहसास को लेकर आज का सफर चलिए शुरू करते हैं। और उस सफर में दोस्तों बातें भी होंगी, खत भी होंगे और साथ होगा कुछ ऐसे नगमों का जो सीधे दिल से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ, क्योंकि कुछ बातें लफ्जों से नहीं सिर्फ सुरों से बयां होती हैं।

वाकई दोस्तों, प्यार का खत लिखने में वक्त तो लगता है और कभी कभी मैं सोचती हूँ दोस्तों, हम सब जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हम सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन हर कहानी वैसी नहीं लिखी जाती जैसा हम सोचते हैं। शायद इसीलिए तो कहा गया है ना, होइए वही जो राम रची राखा, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम तक पहुंचता है। अब देखिए ना, हम में से कितने लोग आज अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। शायद किसी ने बचपन में कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इस खूबसूरत धरती पर गुजारेंगे। लेकिन दिल तो बड़ा अजीब होता है। कभी बिना वजह ही मन पंछी बनकर उन गलियों में उड़ जाता है जहां बचपन था, जहां माँ की आवाज थी, शाम की चाय थी, पड़ोस की हंसी थी और अपनापन बिना बुलाए मिल जाता था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि यहाँ सुकून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो वाकई एक बेहद खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की साफ हवा, खुला आसमान, सुकून भरी जिंदगी सब अपनी जगह बेमिसाल है। लेकिन मन को आखिर चाहिए क्या? शायद इसका जवाब खुद मन के पास भी नहीं होता। हम इंसान भी ना कितने अजीब होते हैं। जो मिल जाता है उसकी आदत हो जाती है, जो बीत गया उसकी याद आती है और जो मिला ही नहीं उसकी फिक्र सताती रहती है। बस इसी उलझन का नाम तो जिंदगी है दोस्तों, और इसी का नाम है ये बावरा मन। तो इस बावरे मन पर एक गाना मैं अब लेकर आई हूँ। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, इरशाद कामिल ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर हैं AR रहमान। मेरा बहुत फेवरेट है, आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है ना दोस्तों, बस एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना कहे समझ ले, बिना पूछे साथ खड़ा रहे। क्योंकि सफर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर कोई अपना साथ चलने वाला हो तो रास्ते और भी हसीन लगने लगते हैं। और जब वो साथ किसी वजह से दूर हो जाता है तो यादें ही हमारा सहारा बन जाती हैं। यादें भी ना कितनी अजीब होती हैं, कभी आंखों में नमीले आती हैं तो कभी होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। कुछ लोग हमारी जिंदगी से दूर चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका साथ, उनके साथ बिताए हुए पल हमारे अंदर एक हमेशा जिंदा सा एहसास रखते हैं। फासले चाहे कितने भी बढ़ जाएं दोस्तों, कुछ रिश्ते दिल की किताब में हमेशा हमारे साथ, हमारे करीब रहते हैं। और शायद इसी एहसास को इस खूबसूरत गीत ने अपने लफ्जों में बयां किया है। तो इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और गानों के साथ। और हाँ, जो ईमेल्स हमें मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ और बातें होंगी प्यारे प्यारे नगमों के साथ। सुनते रहिए 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा, और मैं हूँ रिचा।
1: जब दिल ना करे घर पे खाने का या बनाने का तो क्या करें?
0: भैरवी किचन है ना,
1: घर जैसा स्वाद और हाइजीन अगर दोनों ना मिले तो?
0: अरे भैरवी किचन है ना,
1: चटपटा भी हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे।
0: भैरवी किचन है ना,
1: तो जल्दी से एड्रेस बताओ।
0: पैना हिल्स, वेस्ट एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5096।
1: और फोन नंबर
0: 04116511104। भैरवी किचन एक बार जरूर ट्राई करें।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक।
2: You are listening to Friday with Richa only at 5VBI 103.1 FM.
3: For live streaming at www.5vbi.com.au. Also on demand at
2: www.5vbi.com.au under Indian Hindi.
4: Join us on Friday with Richa.

अजीत सिंह की आवाज में एक और मास्टर्स पीस, एक और बेमिसाल गाना दोस्तों बर्फी फिल्म से हमने लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के प्रोग्राम के लिए हमें आप सबके बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस मिले। सबसे पहले दिल से शुक्रिया आप सबका, क्योंकि आपके ये डिजिटल खत ही तो इस शो की असली ताकत है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं चलिए रविंद्र कौर, सोनम जी, नेहा, शोमा और नेहुम की, जो एडलेड से अपनी पूरी फैमिली के साथ मेलबर्न गए थे। इन्होंने लिखा कि मेलबर्न के माहौल को देखते ही बनता था, हर तरफ उत्साह, हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे थे और हर उम्र के लोग एक ही जज्बे के साथ वहां मौजूद थे। उनके अलावा हमें रंजीत जी, रंगोली जी, राम मोहन बिष्ट जी और संजय चतुर्वेदी जी के भी ईमेल्स मिले। ये सब अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उनका कहना था कि देश से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी उस दिन ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम भारत से दूर हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ऋचा जी, जब हजारों लोग एक साथ भारत माता की जय और मोदी जी के नारे लगा रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सबके चेहरों पर एक ही बात थी, गर्व। ऐसा लग रहा था जैसे मेलबर्न का एक हिस्सा उस दिन हिंदुस्तान ही बन गया हो। कई लोगों ने यह भी लिखा कि जैसे ही श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर आए, पूरा स्टेडियम जोरदार तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। हर तरफ मोबाइल कैमरास थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों की आंखों में खुशी और उत्साह नजर आ रहा था। एक और बात लगभग सभी ईमेल्स में लिखी गई दोस्तों, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहीं काम करते हैं, यहीं अपना घर बसाया है हमने, लेकिन जब भी भारत से जुड़ी कोई बात होती है ना, दिल की धड़कन थोड़ी और तेज हो जाती है। शायद यही तो हमारी पहचान है ना दोस्तों। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़ा रिश्ता कभी भी कम नहीं होता। और वैसे भी दूरियां सिर्फ फासलों की होती है, रिश्तों की नहीं। तो रविंद्र कौर जी, सोनम, नेहा, शोमा, नेहुम, रंजीत जी, रंगोली, राममोहन बिष्ट जी और संजय चतुर्वेदी और इसके साथ और बहुत सारे जो ईमेल्स आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव हम सब के साथ शेयर किए। और दोस्तों, अगर आप भी उस दिन मेलबर्न में मौजूद थे या आपके पास भी कोई और याद हो तो हमें आप लिख सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, वायदा नहीं करती हूँ। तो चलिए, अब वक्त हो गया है एक और खूबसूरत नगमे का, चलिए सुनते हैं, क्योंकि कुछ खास एहसास सिर्फ बातों से नहीं, सुरों से भी बयां किए जाते हैं।

गजल सम्राट मेहंदी हसन साहब की आवाज में ये गजल गाई गई है दोस्तों ओरिजिनली, लेकिन मैंने ये जो अभी आपको सुनवाया ये कोक स्टूडियो से मैंने ली है और ये काफी फेमस हुई थी। हालांकि मेहंदी हसन साहब की बहुत सारी गजलें दोबारा गाई गईं, अलग अलग तरीके से गाई गईं और वाकई ही बेमिसाल हो गईं। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अब खत्म होने को है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं, कोई भी गीत, कोई भी गजल, कोई भी नगमा, तो हमें आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiovidrucha@gmail.com और हमारा नंबर है 04573521633। बाय बाय, टेक केयर, शुभ।